0: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला बिहानको 8 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: सूरन की प्यास लगी,
1: कैसे कहूँ क्या आग लगी,
0: कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु।

0: सरे टकिए नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्रणाली सृजना चोक पोखरा ले विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार ल्याएको जानकारी गराउँदछौं।
1: हाम्रा सेवाहरू
0: हार्ट जोड्ने नसा तथा मेरुदण्ड रोग
1: जनरल सर्जरी सबै प्रकार का अपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थाइरोइड तथा मधुमेह रोग
0: न्यूरो सर्जरी सेवा
1: बाल रोग
0: नाक कान तथा घाँटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दाँत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिब्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इको कार्डियोग्राफी
0: इन्डोस्कोपी ईसीजी ईईजी पीटीए
1: फिजियोथेरापी युरोफ्लोमेट्री
0: केमोथेरापी
1: सुरक्षित गर्भपतन सेवा
0: होल बडी चेकअप हेल्थ प्याकेज
1: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली पोखरा आठ सृजना चोक कास्की
0: फोन 061-572-648 572-849
2: घुट्टु घुट्टु पियो या चिप मरमायो
3: अब घर भी लाइके चीसो होने
4: गर्मी होइन रिफ्रेशमेन्ट सँगै न्युट्रिसन दिन आयो मौसम
3: चीसो होने।

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-0611।
1: Ninety-3.4.

शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केन्द्र बासबारी काठमाडौँ का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर बर्कदिन खान अब पोखरामा उपचार हुने समस्याहरू उच्च रक्तचाप उच्च कोलेस्ट्रोल

0: मम्मी गर्मी भाई के ची सो पियो ना
1: पियो ना लाई ची सो उठाओ हॉर्ने
0: हॉर्ने गर्मी मनाया ट्विक
1: रिफ्रेशमेंट पा न्यूट्रिशन मिक्स
0: ची सो हॉर्ने
2: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युंडई गाड़ी को शोरूम पोखरामा अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा पोखरा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स सबै को सेवा सहित एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा फोन नंबर 0165274256 5375526

0: বাতসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপ লাইন 01-597-06-11
1: खरीद गर्न पाउनुहोस् 32% सम्मको क्याशब्याक वर्ल्ड कप 2026 को टिभी सिजन पास र एक वर्षको नेट टिभी प्याक शर्तहरू लागू हुनेछन् हिमस्टार टिभी उही सेलिब्रेशन हरेक जेनेरेशन
2: हिमस्टार फर अ कम्प्लिट होम
3: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउना
4: पिउनालाई चिसो उठाउ हरे
5: हरे गर्मीमा नयाँ ट्विस्ट
6: रिफ्रेशमेन्ट बार न्युट्रिसन मिक्स
5: चिसो हरे

0: গুগল। বাৎসল্য পোখরা ক্লিনিক, নিউ রোড, পোখরা। ফার্টিলিটি হেল্পলাইন 01-597-0611।
1: घर होस् या अफिस, होटल होस् या रेस्टुरेन्ट, छिटो र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा पोखरा इन्टरनेट, पोखराको ब्रान्ड, 25 वर्षको विश्वास, गति छ अपार, 1 GBPS सम्मका प्याकेजको बहार, स्ट्रिमिङ, गेमिङ, काम होस् या रमाइलो, जहाँ सुकै जाऊ, कनेक्सनमा कुनै गडबडी छैन ढिलो, पोखरा इन्टरनेट सधैँ तपाईँको साथमा, हिजो आज भोलि हामी छौ तपाईँको बाटोमा, छिटो भरपर्दो सुलभ र सहज पोखरा इन्टरनेट तपाईँको पहिलो रोजाइ।
2: ओहो नासर बे, कति छ्याब डिजाइन बे मारेगा ना खिनानी खनी तोला
3: खनाई देवा नासर बे रूपा कोट ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुलारी तोला
2: ए नई श्याबा मार दुकान पो मोना नई पेशोलाई नी च्याब चूरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनाई तो हो नी जगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिस्यानारी बेल्ले छ्याब पोपिम ओछे
3: हजुर किमे झोको लाइनी छब छ्याबा छ्याबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिस्या वा चुवल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखी चोकै यावै क्यार मोहै
2: जग्गा मात्र आनी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलरी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
3: समुताई रबा ता क्रिबा ज्याल जाति क्रिबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्नै यामो
2: तोई मिल तुई विषया रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
3: छतैरा त तान निभिन्द
4: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाकोट।

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला साँझको छ बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

0: पर्यटक नगरी पोखरा में मेट्रो सिटी हॉस्पिटल प्रणाली सृजनाचोक पोखरा विभिन्न किसिम का विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा को उपचार लिया जानकारी कराद
1: हमारा सेवा
0: हार्ट जोड़ने नशा तथा मेरुदंड रोग
1: जनरल सर्जरी सब प्रकार का ऑपरेशन सेवा
0: मृगौला तथा मूत्र रोग यूरो सर्जरी
1: पेट छाती मुटु थायराइड तथा मधुमेह रोग
0: न्यूरो सर्जरी सेवा
1: बाल रोग
0: नाक कान तथा घाटी रोग
1: मानसिक तथा स्नायु रोग
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।